हे परमात्मा मैं कथन कर कहां लगे एक गीत बखाने महमा तोर तू ही प्रभ जाने। मेरा सुभा एक कीड़ी वाला है,

गाव तदनो पवन पणी बसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गाव तदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गाव तदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सुवारे गाव तदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या अंदर नाले गाव तदनो सहित समाधि अंदर गाव तदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पनकीसर जुग जुग वेदान नाले गावन तुदनो मोनिया।

हर रस नाम न पाया ते भागहीन जमपास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित रस पाया मिल जन नानक नाम पुरगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चितवय उदम जा आहर हर जियो परया सैर पत्थर मैं जंत पाए ताका रिज के आगे कर धरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहाओ जन्म पिता लोक सुत बनता

कंगरंजन हरपुर कंगरंजन हर अगमा अगमा पारा सब चावे सब चावे तुलजी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जी आका दातारा हर चावो संतो जी सब दुख सारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सरबंदर अंतर जी हरे को पुरख समाणा एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज उडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुझ बने और न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आखो खाना जो सेवे तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाणा हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पै जिन हर त्याया जी तिनका पो सब गुवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रू समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुर जी।

तेरे नेक पड़े बो सिमरत सात जी, कर किरिया खट कर्म करमता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख परमपुर करता जी, तुद जे वड़े अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू ने चल करता सोई। तुद आपे भावे सोई वरते जी, तू आपे करे सोई। तुद आपे श्रेष्ठ सब पाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचार मैंडा साई। जो तो भावे सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई रहो। सब तेरी तू सब नीच आया, जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मोह गवाया, तुद आप छोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जन सब तेरा खेल, मजोग मिल छड़िया मजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जुड़ाए सोई जन जाने, हर गुण सादी आखो खाने। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू अपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जाय और न कोए। तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए।

पग नहीं चाले, हम देखा तै डूबियले। मन एक न चेत समूड मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुदा जन्म पया। प्रणवत नानक तन की सरना, जिंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया। गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम। मेर साध संगत भज के वलनाम, श्रंजाम लाभ पाव जल तरन कह। जन्म बिरसा जात रंग माया कह रहाओ, जब तब संजम धर्म न कमाया। सेवा

हमरे दुष्ट सब है तुम कहो, आप आदे मोहि बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सेख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आसंगरिए, पूर्ण है हमारी आशा, तोर बहिन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई और न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम थे पाऊं, सेवक सेख मारे तारिए, चुन चुन सत्र मारे मारिए, आप दे मुझे वरिए, मरण काल का त्रास मरिए, पूजो सदा हमारे पछा, श्रिया तोज श्रियास तोज जो करियो रक्षा, राख ले मोरा कन्हारे, सैव संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश संता, काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजी अवतरा, काल पाए कर

नमस्कार है ताहे हमारा जमन का सब जगत बनायो देव दैन दर्शनी पजायो आद अंत के उतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तेसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सेव बन सुख दियो सतन को पलमो बद कियो घट घट के

संतन दुख पाए थे दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पुछाने, कट कट के पढ़ पढ़ की जाने। जावद कर करा करतारा, प्रजा तरत तब दे अपारा। जाव्या करख करत हो कबू, तुम मैं मिलत देह तर सबू। जेते बदन सिर सब धारे, आप अपनी बूझो चारे। तुम सभी तेरे निरालम, जानत वेद भेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ चारत भेदा,

निरंकार का चीन स्नेह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन भिन तो है तेती तुमरा लखा न जाए पुसारा केवल सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडे जे जेर जसे तकीनी पुत पुज खान बोल रच दीनी कऊ फूल राजा है बैठा कऊ संत पयो शंकर अकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आज गा सुरु स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख अबार असख संगरो दुष्ट जेते उठवा तद पाता सकल मलेश करो रण काता जिया तो जितव सरनी परै तिनके दुष्ट दुख्त है वे मरै पुरख जवन पग परे त्यारे चनके तुम संकर सब तारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल नित नय है रक्षा होए तय सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तद काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके तब तनक मोहर हो अरिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह छप सके न कोई एक बार जै तुम्हें संभारा।

सवैया पाए गए जब ते तुम रहे तब ते को आकरे नहीं आने हो। राम रहीम प्राण करान अनेक है मत एक न माने हो। सिमरत सातर भेद सबे भव भेद कहे हम एक न जाने हो। श्री असपान

सदा सप्त सला तेरी नाम अनुसावे। नाम जन कह मन वस्या वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते रहे। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जन भुखा सब गवाइया कर सां सुख मन आए वस्या, जन इच्छा सब पुजाइया।

ठाकुर का पयो। जिसका सब सुधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होयो धारो। इह वस्त्र तजी न जाई नित नित राखियो रुतारो। तम संसार

कोई न जाने तुम्हारा अंतर उसे तेरी चर्चा सब समझी तुम्हारे से चर्चा ही उनके चर्चा करी तुम्हारी दशमत तुम ही जानी नाल प्रदास सदा कुर्बानी इस ओंकार वाली की मत वाचा लक्ष्मी दशम गुरु की समझे गुरु नानक देव जी के आए फिर अंदर जो सेवन राम का सेवन कराए अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर आए श्री हरकृष्ण साहब जी जाइए कृष्ण जाए तेज बहादुर साहब सुनिए धरना गया धारे सतमाए दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अमृत के दाते कृष्ण बजाए सरवानी सब साई हुए दसा पातशाह का ध्यान करके गुरना जी वाहिगुरु वाहिगुरु दसा पातशाही हमी जाती गुरु दारा गुरु आजा गुरु सह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने ध्यान करना जी वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु महाराज जी ने पंच जाए चार साहब जागे चाली बूटे शहीदा मरीदा सतियां बचियां जिन्हों नाम जपया वन के चर्चा देश चलाई देवाई देश कीता जिन्हों का प्यारा प्रचारा की कमाई का ध्यान करके गुरुआ जी वाहिगुरु वाहिगुरु जिन्हों ग्रंथा प्यारा ने सिंगा सिंगनिया माइया पसंदिया ने असह से असह सह सह सुधारे बन के सारे रहे सीमा सीमा जीते गए सत्या में सुनते रहे देखा मुझे बड़े ज्यादा मत कराए गए सत्या नौ प्यार सुनाए तेरा भाड़ा मिठा करके मनाया तना सा प्यारा सत्यारा की कमाई का ध्यान करके अन्या सत्ता प्रभत गुरुद्वारा का ध्यान करके गुरना जी वाहिगुरु वाहिगुरु आप जी के प्रभत खाते जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम कृपया हो कृपया सत्संग संकट तुष्ट हो जहाँ जहाँ खालसा जी सह तहाँ तहाँ रक्षा रह देख देख के संत की जी बिंद की सह श्री साहब जी हो सहाय गुरना जी वाहिगुरु वाहिगुरु बंसो जी सत्संग सिद्धि दान रहत दान उदेश दान सुरक्षा दान दाना चंदा नाम दान श्री अमृतता सह जी के दर्शन स्नान चौंकियाँ चंदे होंगे दुर्गम दुर्ग कथा लक्ष्मी पाठा जीओ गरीबना सतगुरुआ जी के सिखा का मन मिला मत जी मत पर तेरा तेरा बेकाल सतवाजी हे अकाल को सतने पंथ सदा सहाई दर्शा जीओ श्री नवकाना साहब से हो सौ तुम्हारे सुरक्षा दे जिन्हों को पंथ में जोड़ गया कुल दर्शन के पूरा सिंघासा दाना संचारे पाठा जी की बच्चों जी देवाणिया देवाना नदाणिया दे दान बेटियों जी और मासियां दे आते धन धन दसा पाठियां महाराज धन धन दसा पाठियां जी दर्शन जो सह श्री गुरु सह श्री गुरु ग्राम साहब जी आप जी देख गुरु सरदास प्रेम की प्रार्थना जो ही है पाठा जी आप जी ने मेहर करके कृपा की सचिव पाठा जी आप जी की कृपा द्वारा सदरहरा सह जीव विष्णु भयन पाठा जी ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੋਚੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਠਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਠਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਤੇ ਪਾਠਾ ਆਈ ਸਾਹ ਸਮਿਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਾਸ ਸਰਾਸ ਕਦਮ ਕਦਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਾਠਾ ਜੀ ਗਰੀਬਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੱਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵੱਧ ਦੱਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ ਗਰੀਬਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਭੁੱਲਣਾ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇਣੀ ਸੁੱਖ ਹੋਏ ਨਾਮ ਸੱਚਿਆ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ
ਅਰਜੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀ, ਕਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਤਿ ਸੰਤੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋ ਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੋਜ ਕਮਲ ਮੈਂ ਦੇ, ਰਾਜ ਕਰੀਦਾ ਸਾਧਸਾ, ਆਖੀ ਰਹੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣ।

दंडौत बंदन अंकवार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुरु।

हाथ दे रखे अपने को सास सास प्रत पाले प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा नीत रहाओ मन बलास पय सैब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पय जरखाई सतनाम श्री वाहिगुरु जी धन धन साहब श्री गुरु रामदास साहब जीओ।

सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे अपन पाली। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे अपन पाली। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई फल मानो। हर हर कथा नराली रहाओ, हर के संत सुनो जन पाई। गुर सेवो बेग बगाली, सतगुर सेव खर्च हर बांधो। मत जानो आज के काली, हर के संत जपो हर जपना। हर संत चले हर नाली, जिन हर जपया से हर होए। हर मिलया केल कलाली, हर के संत जपो हर जपना। हर संत चले हर नाली, जिन हर जपया से हर होए। हर मिलया केल कलाली, हर हर जपन जप लोचल चानी। हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलो। हम साध जना पगराली, हर हर जपन जप लोचल चानी। हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलो। हम साध जना पगराली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी।

सत्य है सत मांगे मुख कर संतन की दूर अंतर जामी पुरख बुदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सत मांगे मुख कर संतन की दूर लोग पावन गुरु पाणी पिता माता दर्श महत दिवस रात बधाई गाया चेले सर्व जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਲਾਏ ਨਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕੇਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਾਈਏ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਕਿਹ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦੱਸੇ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾਵੇ ਟੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇਹ ਲੰਘੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾ ਨਾਨਕ ਵੇਖੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸੱਚ ਅਸਹਿ ਸੱਚ ਨਾਹੀ ਭਾਖਿਆ ਭਾਓ ਅਪਾਰ। ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇਹ ਦੇਹ ਗਾਕਰੇ ਦੀ ਤਾਰ ਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਜਿਸੇ ਦਰਬਾਰ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੰਤ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚਣਾ ਬੜੇ ਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਅਵੇ ਕਪੜਾ ਲੱਭਰੀ ਮੁਖਤਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੀਏ ਸਭ ਆਪੇ ਸੱਚਿਆ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਗੁਣੀ ਉਦਾਨ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀ ਮਰਖੀ ਪਾਓ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹੱਸ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾਸ ਮਾਈ। ਗੌਰ ਈਸ਼ਰ ਗੌਰ ਗੌਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥਨਾਵਾਂ ਜੇ ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਤੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੀਸਰਠ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਬਿਨ ਕਰਮ ਕੇ ਮਿਲ ਲਈ। ਮਤ ਬਿਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਜਾ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾ ਚੁਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਰਖਾ ਕੇ ਜਾਸ ਕੀਰ ਜਗਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਰ ਨਾ ਆਵੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੇ। ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀਰ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰ ਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤ ਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕੋ ਨਾ ਸੁਝੀ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਨਾਥ। ਸੁਣਿਆ ਤਤਵਲ ਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋ ਨਾ ਸੱਕੇ ਕਾਲ ਨਾਨ ਭਗਤ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਵਰਮਾ ਇੰਦ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹ ਹਨੁਮਾਨ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਜੋ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਹ ਸਿੰਘ ਭੇਦ ਨਾਨ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪਕਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸਤਸੰਗ ਤੋ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ ਅੱਠ ਸੱਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪਟ ਪਟ ਪਵੇ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗੇ ਸਹਿਚਾਨ। ਨਾਨ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪਕਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਨਾਨ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪਕਾ ਨਾਸ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੋ ਤਾਏ। ਕਾਵਤ ਖੁਹਾਰ ਮਨੇ ਗਵੇਂ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੇ ਸੁਰਤ ਹੋਏ ਮਨ ਬੁੱਧ ਮੰਨੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਮੰਨੇ ਊ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੇ ਜਮ ਕੇ ਸੱਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ।
मन्ने वाल ठग न पाए, मन्ने पासे पर जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने पाए से किसन आंदा, ऐसा नाम निर्मिन होए जी को मन जाने मन कोए। मन्ने पावे मुख द्वार, मन्ने परवारे सदार, मन्ने तरे तारे को सिख, मन्ने नाम पावे दिख, ऐसा नाम निर्मिन होए जी को मन जाने मन कोए। पंच प्रधान पंच प्रधान, पंचे पावे दुर्गमान, पंचे सोए दुर्गमान, पंचे को गुरेक जान, जे को कहे करें विचार, करते के करने नहीं सुमा, तौल तारण दया करो तू तूत, संतोष आप रखा संसूत, जे को बुझे हुए सुचा, तो उदय प्रगत पात, अति होर परे होर होर तुझे पास चले। कावन जोर जी जा तरंग के नाम सामना लिखा बड़ी कराम, वेह लेखा लिख जाने को लेखा लिखा किता होए, किता तान था लो रूप, केती दास जाने कौन कूत, पीता पसाओ एक कुकवाओ, तिसे होए लख लरियाओ, कोई कौन कहा विचार, वार ना जावा एक बार, जो जो पावे साई पलिका, तो सदा साम तिंकार, संख जप संख पाओ, संख पूजा संख तप पाओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जुग मठ दास, असंख पद कुम जान विचार, असंख सजी असंख दतार, असंख सुर मुह पक्षार, सख असंख मोहन लिवलायकार, कोई कौन कहा विचार, वार ना जावा एक बार, जो तुझे साई पलिका, तुस असनम निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोरा हराम कोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवट हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ा कूड़े हो जाहे, असंख मलेश माल पाख साहे, असंख निंदक सिर करें पार, नानक जी कह विचार, वार न जावा एक बार, जो तुझ पावे साई पलिका, तुस असनम निरंकार, असंख राम संख थाओ, गम गम संख लो, संख कहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान दी दुगुनगा, अखरी लिखन बोलन वाण सा संजो गोसान, जिन्ने लिखे तो सरना ही, जिन सुन फर जेव फरमाए, तुम तुम पाए, जिता की तरह सच्चा नाम, बने नाम है ना ही को था, कोई कौन कहाँ विचार, वारा न जावा एक बार, जो तुझ पावे साई पलिका, तू सदा सुनाम तनकार, परिये हथ पैर तन देह, पानी धोते तुरसे, मुत दिती कपड़ होए दे, साबुन लई होए तुरे, परिये मत पापां का संग, वो तोपे नामे का रंग पुनी बापी अखना ही, कर कर करना लिख लै जा, आपे बीज आपे ही कहा, नान सुखी आओ जाओ, तीस अप लैदान, जेको पावे कुलकामा सुनया, मने मन कीता पाओ, अंतर दासी रहमाना हो, सबू तेरे मन ही कोय, मनु कीते पसना होए, सात सहान सदा मन जाओ, बेनगो कीते पसना होए, स्वा साधो बाणी बनवाओ, सात सहान सदा मन जाओ, कवन से वेला वास्त कवन, कवन सित कवन बार, कवन से रुति महा, कवन जित हुआ कार, वे न पाइय पंथी, जे होवे लिख प्राण, वास्त ना पायो कादिया, जे लिखन लिख प्राण, चतवार ना जोगी जाने, रुत महा ना कोई, जहाँ करता सुसी को सजे, आपे जाने सोई, किब कर आखा किब सलाही, क्यों बरने क्यों जाना, नाम के आखन सबको आखें, एक दू एक सियाणा, वड्डा सा वड्डी नाई कीता जाका होवे, नानक जेको आपो जाने अगे गहा ना सोहे, पताला पताला खलासा गास, और कोट पल थके वेद कह नकवास, सैसल ठारा कैंक ते बाहे सलो एक धात, लेखा होए च लिखिए लिखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, सलाही सलाहे ती सतन पाइया, नदियां ते वाह पवे सुंदना जानिए, सुंद सा सुल्तान गिरा ते मालता, न केड़ी तुलना हो गई, जे ते सुमन न विसरे, अंत ना सिफते करन कहन ना, अंत ना करने देना, अंत ना देखन सुनना, अंत ना जापे क्या मन मन, अंत ना जापे की कहकार, अंत ना जापे बारह बार, अंत कारण के ते बिल लाहे, ताके अंत ना पाए जाहे, यो अंत ना जाने कोई बता कि ये बता होए, बड़ा साहब ऊंचा था ऊंचे ऊपर ऊंचा ना ये बड़ ऊंचा होए, तो तीसरे ऊंचे को जाने सोए, ये बड़ा आप जाने आप आप नान गर्दी कर जात, बहुत आकारम लिखे ना जाए, बड़ा दादा तिलना तमाए, कितने मंगे हैं जोधे पार, कितने अंत नहीं विचार, कितने खपते विकार, कितने लड़ा मुकर पाए, कितने गुड़ खा ही खाए, केचा दू पुख सद मार, ए दी बजार, बंद फासी पानी हुए हो रात न सुखे कोए, जे को खाए के अखन पाहे, ओहो जाने जे तीन मुखाए, आपे जाने आपे जे अखे से पिके ही जे, जिसम बख्त सित सलाहा, नानक पाशा ही पाच सहा, मुल पार, मुल पारिये मुल भंडार, मुल आवे मुल ले जाए, मुल पाए मुल समाए, मुल तार मुल दीवान, मुल तुल मुल प्रमाण, मुल बख्शीस मुल निशान,
मुल कर मुल फरमान, मुलो मुल आखे न जाए, आख आख रह जाए, अखें वेद पास अखें पढ़े करे बख्याल, अखें वाले अखें अखे रोटी तेल बंदा, अखें ईश्वर आखे सिद्ध आखे किचे चीचे बुद्ध, अखें जानम अखें देव, अखें सुर नर मुन जन से किते अखे आखन पाहे, किते कह कह उठ उठ जाहे, इतने किते होर करें आख रह सके जीवन पाल केवल होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल भी गारता लिखिए सिद्धो मारा गुवार, सोगा कहा सो कर कहा जितया सारे सुमा ले हैं। वाजराज ने संका किते बावन हारे, किते राग परिशो कहियन किते गावन हारे, गावे कहनो कौन पाए जो संत गावे रहने कौन गारे, गावे चित गोप लिख जाने लिख लिख धारम विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सौन सद सवारे, गावे लखन बठे दे तैन लखनाले, गावें सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावें दीर करारे, गावन पढ़त पढ़न रखी सुर दुग दुग बिटाराले, गावे मोहनिया मन मोहन सुरमा मचती वाले, गावन रतन पाए तेरे अक्षर भी सुनाले, गावें जोत महासुरा गावें सा विचारे, गावें खांड मंडल वर पंडा कर कर चितारे, से ही तुझन गावें जो तुझ पावन रते तेरे पासे रसाले, होर किते तुझन गावन से मैं चित मैं नानक क्या होर किते गावन से मैं चित मैं नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच सार सच सची नहीं है पी हो सी सिर च न जिन्नी चाहिए, रंगी रंगी भांति कर जिनसी माया जना पाई, कर वेख कीता अपना ज्योत सुई वड्याई, ज्योत पावै सोई काची हुक्म न काला जाई, सो पात शाह शाह पात साहब नानक न जाई, मुंडा संतोख चंद चोई ज्ञान की करे प्रभूत, खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी शरण माती मान जीते जग बीत, देश देश आद अनिल अनाद अनाहत जीजो एक भगत गंजा भगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजी नाद, आप नाथ नती सब ज्ञान की रिद सिद्ध अवरा साल, संजोग जोग दोई का चलावे लिखिया विभाग, देश से देश आद अनिल अनाद अनाहत जीजो एक इका माई जुत दयाई, चिंचल प्रवान एक संसारी एक मंडारी कलाए जीवान, जीव ते सुभावे तिन चलावे जिउ होए फरमान, ओ वेखे उन्हां नजर लावे बहुता इहो वडाण, देश से देश आद अनिल अनाद अनाद जिहदे कुबेर आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एक बार कर कर वेखे सचिधार, नानक सच्चे की साची कार, देश से देश आद अनिल अनाद अनाद जिहदे कुबेर, एक दो जीवो लख हो है लख होवे लख वीस, लख लख गेड़ा अखिए एकदम जगदीश, ये तो रहा पत बुड़िया चढ़िए हुए तीस, सुन गलां काश की कीटा ईरीस, नानक नदरी पाइए कूड़ी कूड़े ठीस, अख जो चुपे नह जोर, जो ना मंगन देना जोर, जो ना जीन मरना जोर, जो ना राज मान मन छोर, जो ना सोचते ज्ञान विचार, जो ना जीती छुटे संसार, जैसा नानक तुम नीच ना करो, राती रुती सची वार पवन वाणी गनी प्रताप, जिस धरती छाप रखी धर्म साल, जिस जी जुड़ते रंग तिनके नाम नेक अनंत, करनी करनी हुई विचार, सुचा सुचे दरबार तिथे सोन पंच प्रवान, नजरी कर पवे निशान कच पकाई उत्थे पाए, नान गया जाते जाए धर्म खंड का हो, धर्म ज्ञान खंड का खो, कर्म किते पवन पानी वै संत किते कारण भेस, किते ब्रह्मे कारत करिए बहुत करिए रूप रंग करिए, कितने कारण पूरी किते किते चूप देश, किते इंद्र चंद सूर, किते किते मंडल देश, किते सिद्ध बुद्ध नाथ, किते किते देवी देश, किते देव दानव मुन, किते किते रत्न समुद, कितनी हानि कितनी मन, किते पाप मंद, कितने सत्य सिर, किते नान खंड नाथ, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाथ प्रभु कोल आनंद, शर्म खंड की वाणी रूप, तिथे कार्य करिए तुझे गलत कथियों में जाए, जी को कह पिछे पुछत आए, तिथे करिए सुतमात्मा बुद्ध, तिथे करिए सुरां सुरां की शुद्ध, कारम खंड की बाणी जोर, तिथे हो न कोई हो, तिथे जोत महावल सूर, तिन में राम रहा भरपूर, तिथे सीतो सीता में ममा है, ताके रूप में कथने जाहे, ना ओह मरे न ठगे जाहे,
जिनके राम बसे मानुआ है, किसे भक्तों से के लो हो, करे नाम सच्चावन सोए, सात खंड बसे निरंकार, कर कर विखे निरंकार, तिथे खंड मंडल बचपन, जे को किथता अंतनात, तिथे लो लो कार, जब जब हुकम तवे तव कार, देखे विषय कर विचार, नानक कथना कर आसार, जित पहरा ती रखने आर, अहरन मात वेद सार, पाओ फलागुन जपताओ भांडा पाओ मर बलित टहाल, करिए सब सची टकसार, जिनको नजर कर जिनकार, नानक नजर निहार। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत्व महत, जसरा दो जाई दया खेले शगल जग, चंगे आईया बुरे आईया, वाचे कर्म हजूर।

मुख उजले चेती छुट्टी नारी नाम त्याया गय सुखद काल नानक चय मुख उजले चेती छुट्टी नार एक ओंकार सतगुर प्रसाद जाओ श्री मुख पाशा दसवीं छपे संत प्रसाद चक्र चहन अर भर जातर पात नहन जय रूप रंग कर रही थी को कह ना सकत कह अचल मूर्त अनुपाओ प्रकाश संतोषी जे कोट इंद्रान सास हन गुण जे कृपाण महीप सुर नार सुर नेत नेत बन प्राण कहत ताव सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम प्रनाथ समत तुयंग पढ़िया तो छंद नमस्तों काले नमस्तों कृपा दे नमस्तों रूपे नमस्तों रूपे नमस्तों रूपे खे नमस्तों लेखे नमस्तों काले नमस्तों व्याधि नमस्तों गंजे नमस्तों खंजे नमस्तों नाम नमस्तों खावे नमस्तों कर्म नमस्तों कर्म नमस्तों नाम नमस्तों धाम नमस्तों जीत नमस्तों तीत नमस्तों वाहे नमस्तों अडाहे नमस्तों नीले नमस्तों अलादे नमस्तों अनादे नमस्तों छेदे नमस्तों गादे नमस्तों गंदे नमस्तों पंजे नमस्तों गारे नमस्तों पारे नमस्तों सुख नमस्तों अनेके नमस्तों अपूत नमस्तों जीत नमस्तों कर्मे नमस्तों निर्परमे नमस्तों निर्देश नमस्तों निर्देश नमस्तों नामे नमस्तों नाम नमस्तों निर्दाते नमस्तों निर्दाते नमस्तों दूते नमस्तों पूते नमस्तों लोके नमस्तों शोके नमस्तों बताते नमस्तों खाते नमस्तों तमाणे नमस्तों निर्दाणे नमस्तों राहे नमस्तों राहे नमस्तों तरले नमस्तों तरले नमस्तों त्रिभोगे नमस्तों त्रिभोगे नमस्तों गरंगे नमस्तों पंगे नमस्तों गम्मे नमस्तों रम्मे नमस्तों चिलासरे नमस्तों निरासरे नमस्तों जाते नमस्तों जाते नमस्तों माधवे नमस्तों नमस्तों आजवे अजेसन देशे नमस्तों कैसे नमस्तों निगाहे नमस्तों निगाहे नमस्तों काले नमस्तों जाले नमो सर रूपे नमो सर पूपे नमो सर खापे नमो सर थापे नमो सर काले नमो सर काले नमस्ते नमस्तों पे नमस्तों ज्ञान में नमस्तों सुबन में नमो सर गौणे नमो सर पौणे नमो सर अंगे नमो सर पंगे नमो काल काले नमस्ते सुजाले नमस्तों द्वार अवर्ण नमस्तों मरने नमस्तों गिरारण नमस्तों प्रचारण नमो सर्व तंदे नमो सत वंदे नमस्तों नखाते नमस्तों नवाते नमस्तों रहीमे नमस्तों करीमे नमस्तों नमते नमस्तु महंते नमस्त रागे नमस्तु स्वागे नमस्व शोक नमस्वोकम नमस्व कर्ता नमस्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोगे नमस्व जागे नमस्व पाले चाचरी छंद का प्रसाद अरूप है नूप है जू है तू है लिख है देख है राम है काम है अजय है पे है जीत है पीत है तरवान है निदान है तुरान है सर है नील है नाग है जी है जाग है अजन्म है वर्ण है पूत है परम है गंध है पंध है चूध है चंद है नीच है रफीज है चंद है गंध है निर्भूज है सूज है काल है जाल है ना है जा है नंत है मंत है लीक है नीक है निर्लम्भ है सम है गम है जम है पूत है शूत है लेक है शोक है कर्म है परम है जीत है पीत है वाह है गा है मान है निदान है अनेक है फिर एक है जंग प्रयास छंद नमो सर माने समस्त निदान नमो जय देवे पेखी देवे नमो काल काले नमो सर पाले नमो सर गौणे नमो सर पौने अनंगी नाथे नृसंगी परमाथे नमो पन पाने नमो मन माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पन पाने नमो गीत गीते नमो पन पाने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पन पाने नमो बाद भागे अनंगी नावे समस्त स्वरूप परतंगी परमाथे समस्ते प्रभुते कलंक मनाने कलंक स्वरूप नमो राज रजेश रंग परम रूपे नमो जोज गेश रंग परम सदे नमो राज रजेश रंग परम ब्रज नमो शास्त्र प्राणी नमो अस्त्रवाणी नमो परम व्याता नमो लोकमाता पीछी भरणी भोगी भूते नमो जोज गेश रंग परम ब्रज सुजुते नमो नित नाराणे करम करमे नमो प्रेत प्रेत देवे सुधा में नमो रोग हत नमो रग रूपे नमो शाहे नमो दान दाने नमो मनवाने नमो रोग रोग नमस्तंग स्नाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो यंत्र यंत्र नमो इस्ते
नमो तंत्र तंत्रीं सदा सच्चिदानंद सर्वप्रणासी रूपे रूपे स्वस्थवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा ब्रह्मकर्ता अधो अदम उपागो भर्ता परम परम परमेश्वर दोष पालन सदा सर्वदा सिद्धार्थ जालम शे दीपे दीनाम काम समस्त अपराधी समस्त काम तेरा जो चतुर्षण जले हैं थले हैं आप पीत हैं पय हैं प्रभु हैं जीव हैं देश हैं तुष हैं प्रियांग प्रयात शांत राधे वादे रंगी स्वरूपे नमो सर्वान स्वस्थ जाने निवासवन नाथे निवासवन प्रवासे निवासवन गंजे निवासवन पंजे निवासवन काले निवासवन का पाले नमो सा देश नमो सर देश नमो राज राजे नमो सा साधे नमो शाह शाहे नमो मां माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख रोखे नमो सर्वोगे नमो सर्वोगे नमो सर्वगीत नमो सर्वप्रीति नमो सर्व ज्ञानी नमो परम तानी नमो सर्वमंत्री नमो सर्वजन प्रेम नमो सर्व दृसिंग नमो सर्व कृष्ण नमो सर अंगेन पंगी अनंगे नमो जीव जीवन नमो विजय अखिजय विजय समस्तुजय कृपाल करुण प्रणसी सदा सर्वदा श्री चतुशांत प्रसाद अमृत कर्मी अमृत कर्मी खल योगे चल को चल राजे टल साजे अखल धर्म लक्ष करम सर्वदा धर्म सर्व पाणी सर्व प्राण माने सर्व प्राण सर्व प्राण सर्व पुता सब सर्व जीता सर्व देवे सर्व पेवे सर्व काले सर्व पाले रुवा शांत प्रसाद आद रूप नाद मूर जोन पुरुष अपार सर्व मां देव पेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकृपण काल चतुराजी अवधूत रूप साल नाम थामना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरुष दार मूर्ख जोन आद शेख देश और ना देश जाकर जाकर रूप रेख न राग जत तत् शिशु दिशा विशा हुए फैलोग नाम काम विहीन पेख ताम हो न जाहे सर मानस प्रमान स्वय मानता है एक मूर्त नेक दर्शन की खेल खेल अखेल खेल अंत को एक बेपेव न जानी जय वेग अर्कदेव रूप रंग न जात पात सुजानी का जेव तात्मात न जात जाकर जन्म रमहीन चक्कर वक्र हृदय चक्कर चक मानी पोती लोक चौदह के लिखे जग जापी जय जाप आदेव नाद मूर्त थप सवे जय थाप पार्व रूप पनीत मूर्त पूरन पुरुष पार सर्वश्रच स्वयं करपनिहार कालहीन कला संयुक्त काल पुरुष देश धारम धाम सो परम रहत पूत अल सतेश अंग राग नारंग जाके नाम गर्भगंजन दुष्पंजन मुक्त राजान आप रूप मी का नुस्तुत एक पुरुष अवधूत गर्भगंजन गर्भगंजन सर्वपंजन आद रूप सूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरुष अपार सर्वराय सर्वकाय सर्वकृतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्वतेन पेख सर्व शास्त्र न जानही जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण नेत पारण वेद पुराण जाके नीत पाठ नित कोर समृत पुराण शास्त्र न आवसी वचित मत प्रसंत प्रसाद गुणगान उदार निर्मा पार आसन पंग उपमान अनंग अनुपस प्रकाश अनुपव प्रकाश निशन अनास आजन बहाशा हंस राजन राज पानन पान देवन देव उपमान इंद्रन इंद्र बालन बाल रंग रंग कालन काल अनपुत अंग अबा पंग गतमित पार गुणगान उदार मुनगन प्रणाम निर्पन काम आचुत प्रचंड मित गत खंड अलस कर्म दृत्य कर्म धर्म सर्वा बनंड सर्वा पर नंड आंडन बंड चाचरी शांत प्रसाद गुंदे गुंदे गारे तारे हरियम करियम नामे अकामे प्रियंक प्रयात शांत चतर चक्कर करता चतर चक्कर हाता चतर चक्कर दाने चतुक जाने चतुर चक पाती चतुर पाती चतुर चक पाले चतुक काले चतुर चक्कर पासे चतुर चक्कर वासे चतुर चक्र मान्या चतुर चक्र चाचरी शांत न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न का जन्म गया है न चित्र न मित्र परे है पुत्र प्रतिष्ठे अधिष्ठे अजस्य अकस्य भगवती शांत प्रसाद कथते
ਕੇ ਸ਼ਿਜ ਦੇਸੇ ਕੇ ਪਿਜ ਪੇਸੇ ਕੇ ਗੰਢ ਕਰਮੇ ਕੇ ਪੰਜ ਪਰਮੇ ਕੇ ਪਿਜ ਲੋਕੇ ਕੇ ਸੋਕੇ ਕੇ ਅਵਦੂਤ ਵਰਨੇ ਕੇ ਵਿਭੂਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਰਾਜਨ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕੇ ਧਰਮ ਧੁਜਾ ਹੈ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਵਰਨੇ ਕੇ ਸਦਾ ਭਗਨੇ ਕੇ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕੇ ਛਤਰੰਗ ਛਤਰੀ ਹੈ ਕੇ ਬਰਮੰਗ ਸਰੂਪੇ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਅਨੁਪੇ ਕੇ ਆਦ ਅਵਦੀਨ ਹੈ ਕੇ ਆਪ ਅਵਦੀਨ ਹੈ ਕੇ ਚਤੁਰੰਗ ਬਹੀਨੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਰਿਧਾ ਕੇ ਰੀ ਮੇ ਰਹਾ ਕੇ ਬੈ ਬੇ ਐਵ ਕੇ ਪਾਕ ਬੇ ਐਵ ਹੈ ਕੇ ਜੈਵਰ ਜੈਵ ਹੈ ਕੇ ਅਫੁਲ ਗਨਾ ਹੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹਨ ਸ਼ਾਹਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵੰਗ ਕਲੀ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵੰਗ ਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤ ਮਾਨਿਆ ਕਿ ਸੁੱਤ ਦਾਨਿਆ ਕਿ ਸੁੱਤ ਗਾਉਣੇ ਕਿ ਸੁੱਤ ਪਾਉਣੇ ਕਿ ਸੁੱਤ ਦੇਸੇ ਕਿ ਸੁੱਤ ਪੇਸੇ ਕਿ ਸੁੱਤ ਰਾਜੇ ਕਿ ਸੁੱਤ ਸਾਜੇ ਕਿ ਸੁੱਤ ਦੀਨੇ ਕਿ ਸੁੱਤ ਲੀਨੇ ਕਿ ਸੁੱਤ ਜਾਹੋ ਕਿ ਸੁੱਤ ਪਾਹੋ ਕਿ ਸੁੱਤ ਦੇਸੇ ਕਿ ਸੁੱਤ ਪੇਸੇ ਕਿ ਸੁੱਤ ਕਾਲੇ ਕਿ ਸੁੱਤ ਪਾਲੇ ਕਿ ਸਰਵਤ ਹੰਤਾ ਕਿ ਸੁੱਤ ਗੰਤਾ ਕਿ ਸੁੱਤ ਪੇਖੀ ਕਿ ਸੁੱਤ ਪੇਖੀ ਕਿ ਸੁੱਤ ਕਾਜੇ ਕਿ ਸੁੱਤ ਸਾਜੇ ਕਿ ਸੁਰਵਤ ਰਾਜੇ ਕਿਸੁਤ ਸੁਖੇ ਕਿਸੁਤ ਸੁਖੇ ਕਿਸੁਤ ਪ੍ਰਾਣੇ ਕਿਸੁਤ ਪ੍ਰਾਣੇ ਇਸਰੁਤ ਦੇਸੈ ਕਿਸੁਤ ਪੇਸੈ ਕਿਸੁਤ ਮਾਨਿਆ ਸੈਵੰਗ ਪਧਾਨਿਆ ਕਿਸੁਤ ਜਾਪਿਆ ਕਿਸੁਤ ਥਾਪਿਆ ਕਿਸੁਤ ਪਾਣੇ ਕਿਸੁਤ ਮਾਨੇ ਕਿਸੁਤ ਚਿੰਦਰੇ ਕਿਸੁਤ ਚਿੰਦਰੇ।

अशुद्ध हैं, अशूत हैं, के नरकम प्रनाश हैं, प्रवास हैं, नित्य प्रवाह हैं, सैवम सदा हैं, प्रवृत्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, अनुक्त सदा हैं, प्रवृत्त प्रवाह हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, चतुर्षांत अपांग हैं, अनंग हैं, अपेश हैं, लेख हैं, परम हैं, कर्म हैं, नाद हैं, ज्वर हैं, अजय हैं, वे हैं, अपूत हैं, दूत हैं, अनाथ हैं, दास हैं, तंद हैं, बंध हैं, अपल्प हैं, दृकत्व हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनत हैं, लिख हैं, दुख हैं, लेख हैं, तेख हैं, अडा हैं, गा हैं, सम हैं, गम हैं, नील हैं, नाद हैं, अनित्य हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चर प्रशांत सर्व हंता सर्वहंता सर्व ख्याता सर्व ज्ञाता सर्व हत्ता सर्व कर्ता सर्व प्राणं सर्व त्राणं सर्व कर्मं सर्व तन्मं सर्व दुःखं सर्व मुक्ता सावल संतव प्रसाद नमो नारक नाश्य सर्व प्रकार से अनंगम स्वरूपे अपंगम प्रभूते परमात्म परमाशे सदा सत्साह गाव स्वरूपे निर्वाग प्रभूते अनंगी नाम तो पंगी तिरका में नरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पौत्र न पुत्र सत्र न मित्र सात न ज्ञात न ताते न माते न जाते न पाते न साकं स्वरीक हैं आम तो मीठ है स्वयं प्रेम है ये है जय है पवित्र संत के साथ के आरा जहूर हैं के हाजिर हजूर हैं मेसुर सलाम हमेशा सलाम है समस्त सुकलाम है के साहेब दुमाग हैं के उसमें चराग हैं के कामल करीम हैं के राज करीम हैं के रोजी रहीम हैं के राज कर रहीम हैं करीमल कमाल हैं के उसमें नल जमाल हैं गनीमल खराज हैं करीमल वाज हैं हरिपुर स्थान हैं हरासल स्थान है कलंक पुनाद है स्वस्थ निवास है कंजिल गनीम है राय कर रही है स्वस्थ जो है तो सैर कर रहे हैं के नरकम पुनाश है वस्त्र निवास है के सरल गमन है सरल गमन है तमाम तमीज है स्वास्थ्य अजीज है परम परम ईस है स्वास्थ्य अजीज है अदेशल अलेख है अमेशल अमेशल अपेख है जमीन उजमान है अमीकुल अमा है करीम कमाल है कि जीत जमाल हैं कि अचल प्रकाश हैं कि हम तो स्वाद हैं कि अजब स्वरूप हैं कि हम तो भूत हैं कि हम तो कुसा हैं कि आत्म परमा हैं कि अचल अनंग हैं कि हम तो अपंग हैं मन प्रशांत प्रसाद मनवर प्रणाम गुणगन मदाम आर बार अगांज हर नर प्रगांज अनगन प्रणाम मनगन मन मन सलाम हर नर खंड वर नर खंड अन पवनास मनवन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मदाम अनशियांग आसन भंग उपमा पार कत्व चौधार जल थल अमंड जिस विश भंड जल थल महंत जिस विश्वे अंत अन पवनास तृप्त तारक रास आजन वाय कुछ दाह ओंकार अलकसनीय नाल खलखंड ख्याल गुरु अकाल करता प्रणाम चित चरण नाम अन शिष गात आच जिना बात अन्न रंज अन्न चंज गात अन्न रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार तीर्थ का धर्म अत तीर्थ कर्म अन बंत अन ब्रंत अनंत दाता महंत हर ओलम संत प्रसाद करनाले हैं हर काले हैं खलखंड है मैं मंडन है जी केसर है परमेश्वर है कलकारण है सर्ववर्ण है तृप्त के धर्म है जग के स्वयं है मन मान्या है जग जाना है सर्व पर है सर्व कर है सर्वपस् है सर्वनाश है करणाकर है संग्रह है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है परमग्रह है मंडस है खलखंड है पाते पर है करणाकर है जपा जप है तप तप है कृत्ता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है कर्ण कृत है कृत्ता कृत है धर्म कृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृत अमृता अमृत है आजवा कृत है अमृता अमृत है निर्नायक हैं सरकायक हैं बसंबर हैं कुरनाले हैं निरपनायक हैं सरपायक हैं पपंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता कर हैं हरता हर हैं परमात्मा हैं सर्वात्मा हैं आत्म बस हैं जस के जस हैं यंग प्रयात शांत नमो सू सूर्य नमो चंद्र चंद्र नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकार नमो ते तेजे नमो बिंद्र बिंद्रे नमो बीज बीजे नमो रासम तामसम शांत रूपे नमो परम तंत्र अतंत रूपे नमो योग योगे योगे।

जी विस्माद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर है जन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि छेड़े विडाणी विस्माद धरती विस्माद।

सतगुरु विचार रखियो कर प्रगटा सुना सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मुह चुका उत्तम विचार है जिन सच्चे।

हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकार, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलूप, दीन दर्द दुख भंजना।

को भोग जोग हर नाम जपत कठ नाही वियोग जन रत्ता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर धन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात ए हर को नाम काम तेन हर हर गुण नाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्ता नाम की महिमा संत दवसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग बड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल अच अवर ना हुए नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरती पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप तप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत विज्ञान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करै बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खन प्रितनी फिरै चिर जीवै महा उदास तपीसर थीवै अग्र माहे होमत परान अनक असव है भरपूर दान न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमक निमक कर शरीर कटावै तो भी होमे मैल ना जावै हर के नाम समसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटे गर्भ गुमान ना मन ते हुटे सोच करे दिन से अर रात मन की मैल ना पन पे जा इस देवी को बहु साधना करे मन ते कबू ना बिख्या ठरे जल धोवे बहु दे अनीत शुद्ध कहां हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच बहुत स्यान पजम का पहु व्याप अनकिदतन कर त्रिशन ना तापे एक अनेक अगन नहीं बुझे कूट अपाल दृग्य नहीं सिद्ध झूठ सनाही ऊप प्याल मोहे व्यापे माया जाल अवध करतूत अगली जमदान गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लूरे साध संग ए हम मैं छूरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी परे जिस जन को सब दर्श प्यासा नानक ता कै बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रदान साध संग जाका मिटे अभमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिय सब ते उच्चा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मटाना पेखे सगल सिष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर तन को तन तेरो नाओ नतामे को नाओ तेरा थाओ नमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देव दान करन करावन हार स्वामी अगल कटाके अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे अपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सुकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम में उदम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जस सुनर बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कट वसै हर नाम।

पशुपदि रमैया के गुण तीर्थ पुराणी कमन मूर्ति कमन दिस्तानी जिंतु साज स्वार श्रृंगारिया गर्भ अग्न मह जिने उभारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन पूजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साक सैन मुख पयाओ बैठ को नैन ए निर्गुण गुण कछु ना बूझे बख्श लियो तो नानक सीज देह प्रसाद तार ऊपर सुख बसे सुत परात मीत बनता संघस्त देह प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक मुला देह प्रसाद भोगे सबरसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाम करन नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे नानक काड लेव प्रभे आपे आद अंत जो राखन हार तिस स्यों प्रीत ना करे ग्वार जाकी सेवा नाम निद पावे तास्यों मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर साध सदा हजूरे ताको अंधा जांत दूरे जाकी टहल पावे द्रग्यमान तिसे बसारे मुग्ध अजान सदा सदाए भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचे साच छोड़ झूठ संग मचे जो छदना सो अस्त्र कर माने जो होवन सो दूर पुराने छोड़ जाए तिसका कर्म करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लेप उतारे धोए गर्धब प्रीत पसम संग होए अंध कूप में पतत विकराल नानक काड ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक प्रचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्द नाही कछ कर।

अलोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक त्रल शरणागती कर प्रसाद गुरुदेव स्तदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जेहे प्रसाद सिकंदर सन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जेहे प्रसाद बसह सुख मंदर तिसे त्याए सदा मने अंदर जेहे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहु तिस रतना एह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है ध्यान योग जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे चित्ते त्याग कत अवर लुभावे जेह प्रसाद सुख सेज सुविजय मने आठ पहर ता काजा सुविजय जेह प्रसाद तुझ सब को माने भुखता को जस रसन मखाने जेह प्रसाद तेरु रहता तर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावे नानक पत सेती कर जावे जेह प्रसाद अरूप कंचन देई लिव लावो तिस राम सुनेई जेह प्रसाद चराउला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल सिदर ठाके मन सरणी पर ठाक प्रभ ताके जे प्रसाद तुझको न पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभ उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ता की भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरीजे मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे जे प्रसाद अस्वस्त अस्वारी मन तिस सब को प्रभु नाम बसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख त्रोहे प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई इसे त्याए जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है जिन प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिस का ध्यान जे प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पात्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करनाद जे प्रसाद देखे बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभ त्याग अव कत लागू हो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तुम प्रगट संसार जे सब को मूल न मनु विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा जूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सुनाओ आप गवाए तो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल बगास सब सु प्रसन्न बसते मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व नदान प्रभु तेरी मया आपो पछूना किन्हू लया जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनके कछु न हाथ श्लोक अगम गार पार ब्रह्म सोए जो जो कह सो मुक्ता होए सुनमीता नानक बिनवंता साध जना की अचर कथाष्टपति साध कै संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटे सुज्ञान साध कै संग बुझे ब्रह्म नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन पराणी नानक साध की शोभा प्रमाहि समानी साध कै संग अगुप्त चिर मिले साध कै संग सदा प्रफुल है साध कै संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस मुंचा साध संग होए सब कीरेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कत हूं तावे साध संग अस्थित मन पावे साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग

परस्त ब्रह्म ज्ञानी की न ब्रह्म ज्ञानी की सभी परमया ब्रह्म ज्ञानी के कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कै ना ही तंदा ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल भला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी हम भूत्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कार सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी क्रय प्रभ्याप ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बर जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सरा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाख ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुख बधाता ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक पुरतार जो अंतर नाम सर्व में पिख भगवान निमक निमक ठाकर नमस्कार नानक को परस सर्व निस्तार अष्टपदी मिथ्यारा ही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पार तेरे रूप न पेख नेत्र साध की टहल संत संग हेत करना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद बिख्या पर हरे मन की बस न मन ते टरे इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मधे को ऐसा अपस वैष्णो सो जिसु परसो प्रसन्न विष्ण की माया ते होए भिन्न कर्म कत हो निकर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाच है केवल भक्त कीर्तन संग्राच है मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवर नाम जपावे नानक ओ वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मनते बिन सह सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे जिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पर बोध राम नाम आत्म महसूद राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद प्राण सिमरत बुझे मूल सूखम मह जाने अस्तूर तहना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सब को ज्ञान चौवर नाम में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए साध संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उतारे बस प्रेर मुग्ध पात्र को तारे सर्व रोग का औकद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम काहू जुगत कित न पाई है धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया दुर्कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास किसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदी आया दार्द संतन पाई दिन पाया सदा निकट निक हर ज्ञान सो दास दरगह प्रवान अपने दास को आप कृपा करे जिस दास को सब सो जी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे।

भोग अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पैती त्वासी कई कोट मर परम उदासी कई कोट बेर के स्रोते कई कोट पीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कांत न पाव है कई कोट पय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्व कोहिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया शर्माए कई कोट परदेश परमाए जित जित लाभ हो ते तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध गति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंख सर्प उपाय कई कोट पात्र बिरख निप जाए कई कोट पण पानी बैसंतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट सस्यर सूर नखियतर कई कोट देव दान इंद्र शिरछतर सगल समग्री अपने सूत तारे नानक जिस जिस भाव है जिस जिस निस्तार है कई कोट राज सुताम सुसातक कई कोट देव प्राण सिमरत हरसास कई कोट किए रतन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जन कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेश्वर थीवे कई कोट जख किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाच सब ते निरह सब हूँ ते दूर नानक आप अलिप्त है अपरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म जीवे मर है कई कोट भव जो नीपिय है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काल थक पाए कई कोट किए धनवंत कई कोट माया में चिंत जहाँ जहाँ पाना तहाँ तहाँ राखी नानक सब किस प्रभ के हाथे कई कोट पये बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म लहमते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिलियो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा तन तन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जुगत तीनों विस्तार कई बार पसरियो पसार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बहुपात प्रभते हुए ब्रह्मा समात ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रसोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होत आत्म प्रगास कई कोट पत के बेते सदा निहार है एक को नेत्रे कई कोट नाम रस की वह अमर पये सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गावह आत्म रस सुख सह समावह अपने धन को सास सास सुमारे नानक पे परमेश्वर के प्यारी सलोक करन कारण प्रवेक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार ने जल थल मैल सोए अष्टपदि करन करावन कन्न जोग जो तिस पावे सोई होग खिनमय ताप उत्थापन हारा अंत नहीं किछ पार आवारा हुक्मे तार अदर रहावे हुक्मे उपजय हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अंतरंग प्रकार कर कर देख अपनी वड्याई नानक सब मैं रहया समाई प्रभ पावे मनुख गत पावे प्रभ पावे ता पात्र त्रावे सब पावे बिन सास्ते रखे सब पावे ता हर गुण पाखे प्रभ पावे ता पत उड़ारे आप करे आपन विचारे वहां सिनिया का आप स्वामी खिल बिगसे अंतर्जामी जो पावे सुकार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कौ मनुख से क्या हुए आवे जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब किचले जो तिस पावे सोई करे अनजानत बिख्या मेहरत है ये जानत अपने आप बचे धर्मे भूला दैत सतावे निमक माहे चार कुंट फिर आवे कर कृपा जिसे अपनी भगत।

आवे ते सतकाल दै रिस प्रगटावे जां को अपनी करै बख्शीस तां का लेखा ना गने जगदीस जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप मनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही सहात करण कराम न सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावे सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मैं बसै कबहू सोग हर खरंग हसै कबू

होए बह बड राजा कबहू भिखारी नीच का साजा कबहू अप कीर्त मह आवे कबहू भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिवही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन पारी लावे ध्यान कबहू तट तीरथ इकनान कबहू सिर साधक मुख ज्ञान कबहू कीत हस्त पतंग होए जिया अनक ज्योन पर

ते कस होए तब इसको सुख ना ही कोए। जब ए जाने मैं के करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग नित्र ना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राए देश जाए। रब कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लक को उठता आवे तृप्तना आवे माया पाचे पावे। अनक भोग भिख्या के करे न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काज। नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त।

आपह एक आपह अनेक मरै न बिनसै आवै न जाय नानक सद ही रहया समाए आप उपदेश है समझै आप आपे रखिया सब कै साथ आप किन्नो आपन विस्तार सब कछ पिछकाओ करने हार उसके पिन कहो किछ होए स्थान तनंतर एक ऐसोए अपने चलत आप करने हार कौतक करे रंग पार मन में आप माने अपने माहे नानक कीमत कह न जाय सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने

बहुर बहुर अवतार अष्टपदी। संत कै दुखन हर जग कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै। संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए। संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन सोभा तेहीन। संत के हत्थे को रखै ना कोई, संत कै दुखन थान भ्रस होए। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग इंद्र पीतरै। संत के दुखन ते मुख भवै, संतन कै दुखन काग जून लवै। संतन कै दुखन सब जुन पाए, संत कै दुखन त्रिग जुन कमाए। संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को चलै। संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नचाए। संत दुखी का था को नाही, नानक संत पावै ता वे भी गत पाए। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक किन टिकण ना पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन। संत के निंदक को सब रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावै ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित। संत के दुखी को ढान लग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी। संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुखना सुख ते तरे। संत के दुखी को नाही खाओ, नानक संत पावे ता लहे मलाए। संत का दुखी अद बीच के टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे। संत के दुखी को उद्यान परमाइये, संत का दुखी उजड़ पाइये। संत का दुखी अंतर ते थोता, जो सात बिना मृतक की लोता। संत के दुखी की जड़ किसना है, अपन बीज आपे ही खाए। संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दुखी यूं बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़पड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजै, जो पावक ईदन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटै अकेला, जो बुआड़ तिल खेत माही दहेला। संत का दुखी तम तिरहत, संत का दुखी सब मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुही पया, नानक दोत पावे सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत कै दुख ना तृष्टै कोई, जैसा भावे तैसा कोई होए। पया कीर्तना मेटै कोई, नानक जानै सच्चा सोए। सब कट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, जिसै त्यावहु सास ग्रास। सब कुछ वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा को किया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह विचार। जिसनो कृपा करै इसे अपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से। सरोक तजो स्यान पुसुर जनो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाए। अष्टपदी मनुख की टेक बिरथि सब जान, देवन को एक कै भगवान। जिसका दिया है अघाय, बहुर ना तृष्णा लाग गया आए। मारे राखै को आप, मानुख कह किसना ही हाथ। जिसका हुक्म बूस कोय, जिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक विघ्न ना लागे कोय। पुस्तक मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पीओ, सदा सुहेला कर ले जियो। नैनो पीठ ठाकुर का रंग, साध संग बिनते सब संग। चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक ऊजल मथा। बड़ भागी तेजन जग माहे, सरा सरा हर की गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, धनवंत गणी संसार। मन तन मुख बोलै हर मुखी, सरा सरा जानू ते सुखी। एको एक एक पछाने, एक उतकी ओ सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्ह निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपने आप सुजै, जिसकी जानू कृष्णा बुजै। साध संग हर हर जस कैत, सब रोग ते ओ हर जन रहत। आंदन कीर्तन केवल बखान, गृहस्त में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आस्था, किसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागै दुख। जिसको हर प्रभ मान चेते आवे, सो संत सहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किस ते डरे। जैसा सा तैसा दिष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत सब बूजिया। जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सुखम सोए अस्तूल। नह किस जन्म में, नह किस मरे। अपन चलत आप ही करे,
आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सृष्ट आपे आप सगल मह आप अंत जुगत रच थाप उथाप अवनाशी नाही किस खंड धारण तार रहे ब्रह्मांड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जो पाए नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरय तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक रूप बसान आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप पहे निहाल उनकी सेवा तो ही लागे जिसनो कृपा कहे बड़ पागे नाम जपत पाल है विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम कर्मान जो कित करे सो प्रभ कह रंग सदा सदा बसे हसंग सहज सुपाए होवे सो होय करने हार पहचाने सोय प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टान जिससे उपजे।

होकर सब कला भरपूर प्राप्त बिरथा जाननहार जा कै सिमरन उदरी है नानक तिस बिहार स्पदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे कृतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे इससे बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अवनासी प्रव्यापे आप अपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचे कोए तिस बिर नाही तेरे किस काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत हुए नाही वो है प्रभु की जो सगल कत सो है तनवंता हुए क्या को गर्भ है न सब किस किसका दिया द्रव्य अत सूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहतावे जे को हुए बै दतार किस दिन हार जन गवार जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नानक सुजन सदा अरोड ज्यो मंदिर को थामे थमन तुम गुरु का शब्द मने अस्तमन ज्यो पाखान नाव चढ़त प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन हुए विगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे ज्यो साधु संग मेल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बात जो दूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिललाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख तब देव नहार अवर त्याग तू पितै चितार जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे अजान कौन बस आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पथ सेती घर जाए जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान।

सद बलिहार चन साध के तोये तोये पियो अर प्रसाद को अपना जियो साध के तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनक विघ्न से साधु राख है हर गुण गाये अमृत तक है कोट गही संत हम दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को ज्वालन हार भूखे को देवत आधार सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सबके किसका करने जोग चित बिन दूसर हुआ ना होग डप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल एक करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक तो जन निर्मल तिया डाट मन गुर की पतीत किस दन आवे हर प्रभ जीत पगर पगर सुनिए ते लोए जाके हृदय को होए सच करनी सच ता की रहत सच हृदय सतमुख कैत सच इद्र साचा अकार सच वत साचा पसार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समत्ता सलोक रूप न रेख न रंग किस एह गुण ते प्रभ भिन्न तिसै बजाए नानका जित हो ऐसो प्रथम परि अब नासी ब्रह्मन में राग मानुख की तू प्रीत त्याग तिसते परे नाही किस होए सर्व निरंतर एको सोए आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन के नराव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कृपाया सोई होग हरन परन जाका नेतर फोर तिसका मंत्र ना जाने होर अंध रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए कर तक राज महराज जोग मह जोगी तप मह तपीसर गृहस्थ मह भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मेत नाही सगल देव हारे अवगाए पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत।

ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे नंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तारे नानक सो सेवक सास सास कुमारे अपने जन का प्रदाता कै अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत राखे ताकि गात्मित कोई न लाखे प्रभ के सेवक को न पहुंचे प्रभ के सेवक पूछते ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दै जिस प्रगटाया निकी की मैं कला कै पसम कर लश्कर कोट लाख जिसका शासन काटते आप ताको राखत देकर हाथ मानस जतन करत बहु पांत किसके करतब व्यर्थ जात मारे न राखे अवर न कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच कह रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख बनानी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत इमन तन तरपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दिसताया नाम तन नाम रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नाम मैं नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जस जेह बाद दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात कर भगत आत्म कह चाय प्रभ अपने सो रह समाये दो हो आहोत सो जान प्रभ अपने का हुक्म पहचान तिसकी मैं मकौन बखानू तिसका गुण कह एक न जानू आठ पैर प्रभ सह जूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओटले मन तन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी सन सर्व सुख पावे तिसके दर सो सर्व पाप मटावे।

सेवा करतो हे निष्कामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मातले, बीस बिसरे गुर का मन मान है, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, हर कबार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम, सह स्यान पलया ना जाइए, नानक ऐसा गुर बड़पागी पाइए, सफल दर्शन पेखित पनीत, प्रसत चरण गत निर्मल रीत, पेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गह गवे, सुन कर बचन कर्म आगानी, मन संतोख आत्म पतियानी, पूरा गुर अख हो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेख हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लए मलाए, जेबा एक पुस्तक अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोल न पहुंच प्राणी, अगम गुचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाई, अनक भगत बंधन निरकरे, चरण कमल हृदय सिमरे, सब लिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, के हर रस पावे जर कोए, अमृत पीवे अमृत सो होए, उस पुरख का ना ही करे बना जाके मन प्रगटे गुणतास, आठ पैर हर का नाम ले, सतबदेश देव को दे, वो माया कै संग न लेप, मन में रखे हर हर एक, अंधकार दीपक परगासे, नानक परम मोह दुख सहते नासे, तब तमाए ठांड वरताई, आनंद पया दुख ना टे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, ओ चुका निरपो होए बसे, सगल व्याध मन तेखे नसे, जिसका सतन कृपा तारी, साध संग डपना मरारी, चित पाई चूके परम गमन, सुन नानक हर हर जस सवन, निर्गुण

को सोए ओठ को त्रव्या रूप रंग पय प्रगा साध के संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथना चल है बिन भजन बिख्या सगली चार हर हर नाम कमावना नानक की संसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बसारो चरण कमरिद में उतारो कर्ण कारण सो प्रस मत दृढ़ कर गहो नाम हर वक्त ए तन संचो हो वह भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंठ तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित वंश है मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा पजहर की सरनी अनक पावी रोग ना जाए रोग में तै हर अब खदलाए सब निदान में हर नाम निदान डप नानक दरगह परवान मन प्रभु दो हक नाए दै जिस तावत आवे खाए आंको बिघन ना लागे कोय जा कह हृदय बसै हर सोए कल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सरा सुख पाओ पौ बिनसै पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसै अवनासी कहो नानक काटी जम फासी सत विचार कह जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रसेव आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का हुए उरार हर हर सिमर प्राण आधार अनक पाप न छूत न हारे सिमरत शास्त्र वेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक पर पाए सांगना चाल सके रह तना तू क्याल पतावे मूर्ख मना सुत मीत कटम अरबनता इनते कहो तुम कवन सुनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार असहस्ती सवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिंदिए बुझै न बिगाना नाम सार नानक पछताना गुर की मत तू ले आनी भगत बिना बोडू बे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल हुए तुम्हारु चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किले बिठ जाए आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पूत सत हर को नाव सह सुभाए नानक गुण गाव गुण गावत तेरी उतर समैल बिन सजाए होमे बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रह सर नाम समाल चार सियानप सगली मना साध संग पावे सच तहां हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दगे जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जा कह मस्तक लेख एको जप एको सलाह एक सिमर एको मन आए एक के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हरे आप पूरन पूर रहियो प्रभ व्याप अनक विस्तार एक ते भये एक अराध परासत गए मन तन अंतर एक प्रभराता गुरु प्रसाद नानक एक दाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सुनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाय अष्टपदी जाच

प्रभु की नित नीत एक फुट एको आधार नानक मांगे नाम प्रवसार प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हरस पावे बिरल कोए जिन आख्या से जन तृप्तानी पूर्ण पुरख नहीं डोलानी सुभर भरे प्रेम रस रंग उपजय चाओ सार कै संग परे तरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवनाग बड़ भागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रत्ते सुख होए सेव की मस्ता पूरी तई सतगुर ते निर्मल मत लई जान को प्रभु होयो दयाल सेवक किन्नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भरम गया इस पुन्नी सरदा सब पूरी रब रहया सब संग हजूरी जिसका सत लिया मलाए नानक प्रति नाम समाए सोकम बिस्तरै जे काल न पाने सोकम बिस्तरै जे किया जाने सोकम बिस्तरै जिन सब किस दिया सोकम बिस्तरै जे जीवन जिया सोकम बिस्तरै जे अगन मै राखे गुर प्रसाद को बिरला लाके सो क्यों बिसरे जे बिक ते काडे जन्म जन्म का टूटा गांड है गुर पूरे तत एह बजाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो ए काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवर नाम जपावो अगत पाए तरिया संसार बिन भगति तन हो सी।

दर्शो होए मन बिकसे साध चरण धोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजे कर्मया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभु बख्शंद दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कृत कृपाल आर पुरख कारण कृतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सो होए पनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग बड़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु पूजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत फली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरु मंत्र सार संग प्रभु देव।

प्रजापस्पदी तब अकार खतना दृष्टि पाप पुण्य तब कहते होता जब तारी अपन सुन समार तब बैर विरोध किस संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम अपन खेलो आप वृतीजा नानक करण हार ना दूजा जब होवत प्रभु केवल तनी तब बांध मुक्त कहो किसको गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुरग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रस्तय सुपाए तब सेव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी ज्योत तरह तब कवन नर कवन कत नर आपन चलत आप करण हार नानक ठाकुर अगम अपार अब नासी सुख अपने आसन तब जन्म मरण को कहा बनासन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब दम की त्रात कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन मुंदन मादे आपन आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा जहाँ निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तूता जहाँ निरंजन रंकार निर्माण तह कौन को मान कौन अपमान जहाँ स्वरूप केवल जगदीश तहाँ छल छिदर लगत कहो कीस जहाँ ज्योत स्वरूप ज्योत अंग समावे ताकि सह पूख कवन तृप्तावे कर्ण करावन कर्ण हार नानक कते का नहीं सुमार जब अपनी सुबा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जहाँ सर्व कला आप है प्रवीन ता भेद के तेव कहा को चीन जब आपन आप उतारे तो सगन अप सगन कहा विचारे जहाँ आपन ऊच आपन आप नेरा ता कौन ठाकर कौन कहिए तेरा बिस्मर बिस्मर ही बिस्माद नानक अपनी गत जान हो आप या अचल अचेद अपेद समाया ऊहा किसे व्याप्त माया आप को आप है आदेश एक गुण का ना ही प्रवेश जहाँ एक है एक एक भगवंता ता कौन चिंत किस लागे चिंता जहाँ अपने आपे आप पतियारा ता कौन कत है कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आप को आप है पहुंचा जहाँ प्रचू प्रपंकार एक गुण में किन्नो विस्तार पाप पुण्य ता पही कहावत हो नरको को सुर्ग बंछावत आल जार माया जंजाल हो मैं मो परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोच तो नानक एक है जहाँ अवगत भगत आए आप जहाँ पसरे पसार संत प्रता दुह पाक का आप है तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आप है कौतक करे अमद चोज आप है रस भुगन निर्जोग जिस पावे तिस आप नाए लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे।

काल अमरतय अमरापर पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन को दिया अज्ञान अंधेर बनास हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगास अस्पदी संत संग अंत प्रवरीता नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक घट माही अन करंग नाना दिष्टाहि नौनिद अमृत प्रप का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन तुम्हार अनहत तैनाद कहन न जाई चर्ज विस्मार जिन देखिया जिस आप दिखाए नारक तिह जन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत अन्न माहे आकाश पयाल सब लोक पूर्ण प्रतिपाल बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी व्यसम तर माहे चार कुंट दैर से समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाव वेद प्राण सिमृत में देख सतियर सूर नक्षत्र में एक वाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल ना कब हूँ डोल सर्व कला कर खेल खेल मोल ना पाइय गुण है अमोल सब ज्योत में जाकी ज्योत आर रहे स्वामी उत्पोत गुरु प्रसाद परम का नास नानक चिन में ए बसास संत जना का पिखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुने सुर बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिकी रहत सत बचन साधु सब कहत दो जो होए सोई सुख मन करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत्य किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एक अंकार अनक कला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मलाय कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप प्रपूर अंतरगत से आप जनाए नानक तिस जन आप जाए सर्व पूत आप वतारा सर्व नैन आप पेखनहारा सगल समग्री जाका तना अपन जस आप ही सुना आमन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सब के मत लिप्तो रहे जो किस कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाए इससे हुए सुना ही बुरा पुरै कहू किने कच करा आप भला करतूत आत्मी की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सर साच पोत पोत आपन संग्राच ताकि गात्मित कही न जाए दूसर हुए तासो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुरु प्रसाद नानक के जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मलाए ले तब सोए तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया।

वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान हुए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी ने गुरमुख प्यारिया पासों हजूर जी इलाही गुरबाणी का रक्त नाम कीर्तन श्रवण किया है जी। लड़ीवार हजूर जी पावन पवित्र गुरबाणी की विचार जो सतगुरु की कृपा आप करते आ रहे हैं, गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पावन पवित्र श्लोक जिन्हों विचों अज आप जी ने गुरु कृपा नाल श्लोक नंबर 44, 45 और 46 श्रवण किए, क्षमा करना क्योंकि दिन थोड़े ने, केवल एक हफ्ता है। ये आप गुरदेव के इन श्लोकों को संपूर्ण करना, संपूर्ण व्याख्या कर जानी, इस करके थोड़ा जा संकेत संकेत इन श्लोकों की व्याख्या होगी। गुरु तेग बहादुर जी कृपा कर आप ही अंदर का टिकाओ एकाग्रता सू बख्शन, हजूर के बचन इस हिरदे भी किसी वस जाए। करो मेरा मन गुरु बख्शी साहब के बख्शे हुए नाम आप हजूर के चरणों में हाजरी लवाइए। प्यार अदब नाल उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्श गुरमुख प्यारो, फिर उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिन्हों के पावन पवित्र श्लोकों की विचार गुरु कृपा ने आप करन लगे हाँ, सतगुरु के परसों जो श्लोक आप विचारे थे वो श्लोक सी, जे घट सिमरन राम को छो नर मुक्ता जान। इहदा अर्थ किता सी कि जिस घट विच जिस हिरदे विच वाहिगुरु जी का सिमरन टिक गया, साहब कहिंदे को मनुख मुक्त है। ते हजूर ने फिर एक होर नाल गल कह दिती, ते नर हर अंतर नहीं, उस मनुख विच ते प्रभु विच कोई अंतर नहीं। साहब कहन लगे, नानक साची मान इस गल मेरी नू सच्ची करके मनी, झूठ ना जानी। साहब ने उधर कह रहे ने, उस शरीर विच उस मनुख विच ते प्रभु विच कोई अंतर नहीं, जिस घट विच मालक दा सिमरन टिक गया। ते अज हजूर कहन लगे, एक भगत भगवान जे प्राणी कह नाहे मन। इत्थे भगत दा अर्थ भगती करन वाला नहीं, इत्थे भगत दा अर्थ भगती, भगत दे तत्ते नू सिहारी है। साहब कहिंदे ने, एक भगत भगवान जिस मनुख दे मन विच एक वाहिगुरु जी की भगती नहीं। साहब जी पुछया, महाराज फिर वह मनुख की हो जाए जिदे अंदर भगती है, वह मुक्त है, उहदे विच ते प्रभु विच अंतर कोई नहीं। ते इत्थे हजूर कहन लगे, एक भगत भगवान जे प्राणी कह नाहे मन।

0: लग जे सभा दे विच कवार जी फुल चढ़ी चंदा दी
1: सुच गड्डी तोरती स्टेशनों वेखिया सिंगल ना कावता दे लड्डू काड़े

0: आते बीच दीवा फाड़ के फिर लाचा बीच लाचा रूप चाल दी आते बीच दीवा फाड़ के
1: लाच तक जदों जीत तेज चार दी
0: लाच तक जदों जीत

0: कलगियां वाले प्रीतम सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सपुत्री अपने उस परन नूं निभा रही है जिहड़ा हर गुरु के सिख दे जुम्मे सतगुरु गुरु नानक देव महाराज दे घर दा जो अथान है वह उतारन वास्ते लगा होया। क्योंकि अज जे संसार दे कोने कोने उत्ते असी सरदारियां दा निग माण रहे हैं ते इहदे मगर बहुत वड्डा वह संघर्ष है जिहड़ा सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने मनुखता वास्ते कीता है। क्योंकि कोई मनुख नवा नहीं आया, मनुख तो उही सी जिहड़ा इजड़ा वांगू दुश्मन दे अगे लग के चला जांदा सी, जिहदा धन दौलत लुटिया जांदा सी, जिहदी इज्जत लुटी जांदी सी, जिहदे उत्ते जिहड़े हमलावर सन उन्हां नूं कोई हथियार ही वरतन की लोड़ नहीं सी। पर यह बख्शिश ते रहमत किन्ने कीती, किन्ने साडे बाजुआं च बल दिता, किन्ने अणक दिती, किन्ने सानू ये जीवन की जिहड़ी युक्ति दिती, यह सी सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज का वह घर जिन्हें डिगे हुए मनुख नूं इस स्टेज उत्ते लै आंदा भाई जिहड़ा एक एक मनुख सी एक एक लख का मुकाबला करता सी। जिथे खालसा मुकाबले विच नित्रदा सी उत्थे बीबियां दे जदों इतिहास की गल करदे हैं ते इन्हां ने भी किसी पक्ष के उत्ते कमजोरी नहीं आउण दित्ती, बहुत दलीलां ने, पर समा बड़ा सीमित है। क्योंकि आपां ने साडे बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर गुरु नानक सिंह जी पटियाला यूनिवर्सिटी वाले वो साडे दरम्यान पहुंचे हुए ने, बड़ी पंथ की प्रमाणित शख्सियत ने और सतगुरु महाराज जी की बेअंत बख्शिश से रहमत है उन्हां उत्ते, जिस बख्शिश के सदका उन्होंने बहुत वड्डी खोज करके साडा जिहड़ा आउण वाला विरसा है उन्नू संभालण वास्ते जिहड़ी सतगुरु महाराज जी की बख्शी हुई संगीत की परंपरा सी उन्नू जिथे पूर्ण रूप विच संगत दे विच लियांदा है उत्थे निरंतर इहनू अगे तोरन वास्ते बहुत वड्डा योगदान पा रहे ने, साडे दरम्यान पहुँच चुके ने। आओ इधर जिहड़ी फौज सी जदों उन्हें पुछया भाई तू कौन है, तो यह बीबी किसी बगैर हिचक झिझक दे अपना इस दुश्मन के सामने पक्ष दस रही थी, मैं अपने वीर का संस्कार करने वास्ते आई हाँ, मैं तो हथों डरती नहीं, मैनू किसी का डर नहीं। आओ चार लाइन कविता दियां पेश कर लगे सरवण कर।
1: खुदे राए तमकियां सी सुन के खीरी डरी ना पोरा है शरण कौर सिंह।

0: मूर्ख सिंह नहीं मौत तो डर दे
1: ओ मरनो भी मर दे नहीं मर के भी मर दे नहीं जिन्ना ने धर्म ले तेग उठाई की डर ना मारने तो मैं सुचिता

0: वचन हो गया पूरा।
1: ओ मैनू डर लगदा नहीं मैं सतगुर दी ओट टकाई, मैनू डर लगदा नहीं मैं सतगुर दी ओट टकाई, की डर न मरने तो मैं सत्कार करन ले आई।
2: इस बीबी ने उस सतगुरु महाराज जी दे पावन वाक नूं पूर्ण कीता, जे तो प्रेम खिलन का चाहो फिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। इन्हें ललकार के आख्या मैं शरण कौर हैं, मैं कलगियां वाले दी पुत्री हाँ, ते मैं जिहड़े इस जंग विच मेरे वीर शहीद होए ने, मेरा पति शहीद होया, मैं उन्हां दा सत्कार करन वास्ते आई हाँ। दुश्मन ने घेरा पाया चार चफेरियों, इस बीबी नूं शहीद कीता, इनू मारिया, इनू चुक के इस चिखा दे विच सुट दिता। ते इस बीबी ने अपने गुरु दे छके हुए अमृत नूं जिथे गुरु दी बख्शिश ते ओट सदका संपूर्ण कीता, उथे इतिहास दे पन्नियां विच एक मील पत्थर वजों अपना जिहड़ा नां सी स्थापित कीता। अज जदों भी गुरु किसे चमकौर दी गढ़ी दे जंग दी गल करनगे, उदों इस बीबी दे इतिहास दा भी इस चमकौर दी गढ़ी दे नाल वर्णन जिहड़ा संगती रूप विच कीता जाएगा। जिन्हां जिन्हां गुरमुख प्यारियां ने वर्तमान नूं संभालदे होए, मैं पहले पड़ाव दे विच वी आप दे नाल इथों विचार लैके तुरिया सां कि तिन्नां कालां दे विच दुनिया गुजरदी है। वर्तमान जिहड़ा ये कौमां दी जिहड़ी जिंदगी दी घाट दी टंकसाल हुंदा है, जिहड़ियां कौमां वर्तमान संभाल लैंदियां ने उहदा भूत ते भविख जिहड़ा है अपने आप सवारिया जांदा है। ऐसे इतिहास दे पन्ने ने जिन्हां उत्ते असीं गौरव करदे होए जिथे अपनी शान नाल जीउण दा हक दुनिया दे विच रखदे हैं, उत्थे सानूं इन्हां नूं याद करके इन्हां तों निरंतर सिक्ख्या लै के इहदे विचों जिहड़ा बल मिलदा है उहनूं कौमी एनर्जी वास्ते सानूं वरतना चाहीदा है। इहो ही भावना, इहो ही आप दे चरणां दे विच बेनती करदा होया जथा आप तों खिमा दा जाच हो रिहा है। बिनत गुरसिख संगत सिख साध संगत वल्लों इतिहास पेट माया हाजर है। वाहिगुरु खजाने भरपूर करन, चढ़दी कला बख्शन, गुरसिखी जीवन बख्शन। अगला प्रोग्राम बहुत ही सवादला है, साढ़े जिथे मना नूं मोहण वाला है उत्थे साढ़े वास्ते बहुत वड्डी जानकारी देण वाला है। साढ़े सत्कारयोग बाबा जी आप दे नाल आउण वाले समय की तरतीब जिहड़ी है वो सांझी करनगे। जथे नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।